0: और मैं पाचू
1: इटी विनो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: और मैं पाचू
1: इटी विनो और रेडियो
2: Aaron.

0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो